0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: हस् त म लाग्छु है।
1: सुल्टिनी भोलि 2 बजे।
0: ए भोलि त म भ्याउँदिन।
1: होइन, भोलि म तिमीलाई माग्न आउँदैछु। तिम्रो बाबा त मान्नुहुन्छ नि?
0: मलाई के थाहा, मनाइ हेर्नुहोस्।
2: सुल्टिनीको के छ खबर?